संसार विकार संसीम तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसहे जगाए पियाए रास्य कथ कथा तन जानी।

पयसूत अंग हीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कहिक सर्व को पत पार।

सज के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्व

के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थपे के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र

निचिंत है सुनिंत है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अडाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है पुज चर

दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाहे। दीवाने को कर में कहा मधुमा मेल दर न लिखा पीड़ छुटे।